0: Hello, and Jay Massey. Now you are listening to Good News FM 105.1 MHz Stereo Sound, the voice of the Lord.
1: अब प्रस्तुत हुँदैछ विभिन्न अंग्रेजी वर्जन गीतहरू।